0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारी आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini.
1: भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। मानव समुदाय पर समर्पित धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस का दूसरा अध्याय हमें मानव का एक दूसरे के संग बढ़ती निर्भरता पर चिंतन करने का आह्वान करता है। यह वर्तमान दुनिया की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इस सच्चाई को यद्यपि चाहिए कि वह अपनी गहराई में लोगों के बीच एकता में पूर्णता को प्राप्त करे, जिसके लिए व्यक्ति की पूर्ण आध्यात्मिक गरिमा के प्रति आपसी सम्मान जरूरी है। ये वे बातें हैं जो हमारे समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक ओर तकनीकी विकास, संचार और सोशल मीडिया तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में निरंतर वृद्धि नई संभावनाओं को खोल रही है। जहां हम दीवारों को टूटता और दूरियों को कम होता पाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम संबंधों को व्यक्तिगत तौर में कम और आभासी रूप में अधिक होता पाते हैं। यहाँ हम अपने लिए एक जोखिम को पाते हैं जो हमारे निर्णयों को अल्गोरिदम के हवाले कर देता है, जो कि सिर्फ मानवीय चेतना का भाग है। इस संदर्भ में ख्रिस्तीय समुदाय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सामाजिक रिश्तों में वास्तविक सार और व्यक्तिगत गहराई हासिल हो। धर्म सभा हमें ईश्वर की सृजनात्मक योजना से शक्ति और जीवन जीने के तरीकों को अपनाने हेतु आह्वान करता है, जहां सभी मानव एक परिवार का निर्माण करने और एक दूसरे के संग भ्रातृत्व के भाव में व्यवहार करने को बुलाए जाते हैं। यही कारण है कि हम ईश्वर और पड़ोसी के प्रेम को पहली और सबसे बड़ी आज्ञा स्वरूप पाते हैं, जो कि यीशु ख्रिस्त में पूर्ण रूपेण प्रकट होती और अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। संत पापा लियो ने कहा कि मानव की परिपूर्णता और समाज का विकास अपने में एक दूसरे के संग पारस्परिक निर्भरता से संलग्न हो। उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध रखना या उन्हें अलग करना अपने में अर्थहीन होगा। इतिहास, यहाँ तक कि वर्तमान इतिहास भी इस सत्य की पुष्टि स्पष्ट रूप में करता है। इसलिए हमें बार बार यह दोहराने से कभी नहीं थकना चाहिए, जैसे कि द्वितीय वैटिकन महासभा के आचार्यों ने अपने शब्दों में किया कि सभी सामाजिक संस्थाओं की विषय वस्तु और लक्ष्य मनुष्य ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपनी प्रकृति के कारण पूरी तरह से सामाजिक जीवन पर निर्भर है। इस दृष्टिकोण से गाउडियम एट स्पेस इस बात पर जोर देता है कि दुनिया के लोगों और देशों की विविधता अपने में एक खतरा या एक जोखिम स्वरूप ना समझा जाए, बल्कि यह एक समृद्धि और विकास का एक साधन हो। युद्ध, जो कभी कभी हिंसा में परिणत होता है, पाप की शक्ति का परिणाम है और जिस भांति यह मन स्थितियों और कार्यों को विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न करता है, हमारे लिए विनाश और मृत्यु का कारण बनता है। हमें सदैव आदान प्रदान, साझा करने और सेवा करने के तर्क हेतु खुला रहना चाहिए, जैसे कि हम मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में पाते हैं। इस आधार पर प्रेरितिक धर्म सिद्धांत जन सामान्य की भलाई के बारे में एक ठोस परिभाषा प्रस्तुत करता है कि यह सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों का योग है जो सामाजिक समूहों और उनके व्यक्तिगत सदस्यों को संतुष्टि या विकास के लिए अपेक्षाकृत संपूर्ण और आसान मदद प्रदान करती है। इसके साथ ही लोगों के बीच परस्पर आत्मनिर्भरता को स्वीकारना, हर सामाजिक समूह को चाहिए कि वह दूसरे समूहों की जरूरतों और नैतिक उम्मीदों और यहाँ तक कि पूरे मानव परिवार की भलाई का ध्यान रखे। संत पापा लियो ने कहा,
2: I padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche di maggiore urgenza.
1: इस आधार से शुरू करते हुए धर्म सभा के आचार्यों ने इस भांति कुछ व्यवहारिक और विशेष परिस्थितियों को सुझाया। सर्वप्रथम व्यक्ति का मानवीय सम्मान, गौडियम एट स्पेस इसके संबंध में कहता है, जो कोई जीवन के विरुद्ध है, जैसे कि किसी तरह की हत्या, नरसंहार, गर्भपात, इच्छा मृत्यु या स्वयं के विनाश की चाह, जो कुछ भी मानवीय सम्मान की समग्रता का हनन करता है, जैसे कि अंग भंग करना, शरीर या मन को यातना देना या इच्छा शक्ति को ही जबरदस्ती दबाने की कोशिश करना, जो कुछ भी मानवीय सम्मान का अपमान करता है, जैसे कि अमानवीय स्थिति में जीवन यापन करना, मनमाना कारावास, देश निष्कासन, गुलामी, वेश्यावृत्ति, महिलाओं और बच्चों की बिक्री, इसके साथ ही घृणित कार्य के स्थल जहां व्यक्तियों को लाभ हेतु चीजों वस्तुओं की भांति उपयोग किया जाता है, न कि स्वतंत्र और उत्तरदायी जनों के रूप में। ये सभी बातें और इनके जैसी अन्य बातें वास्तव में घोर निंदनीय हैं। दूसरी परिस्थिति सभी मनुष्यों की मूलभूत समानता, सामाजिक न्याय की मांग करती है। इसके संदर्भ में दस्तावेज कहता है, हर प्रकार का भेदभाव, चाहे वह सामाजिक या सांस्कृतिक, लिंग, जाति, रंग, सामाजिक परिस्थिति, भाषा या धर्म के आधार पर हो, हमें उन्हें दूर और उखाड़ फेंकने की जरूरत है, क्योंकि वे ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध हैं। अंततः धर्म सभा के आचार्य हमें यह कहते हैं कि हम व्यक्तिवाद की मानसिकता से परे जाएं और उत्तरदायित्व और सहभागिता के मनोभावों को अपने में वहन करें।
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि मानवता का यह दृष्टिकोण जो लोगों का समुदाय है, हमारे लिए द्वितीय वैटिकन सभा की ओर से एक मूल्यवान निधि स्वरूप दी गई है। यह हम सबों को व्यक्तिगत और सामुदायिक आत्म परीक्षण करने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप हम वर्तमान समय के सामाजिक और राजनैतिक परियोजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो व्यक्ति के मानवीय सम्मान, सामाजिक न्याय और जन सामान्य के हित में स्वतंत्र सहभागिता पर आधारित है, क्योंकि मानवता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हर व्यक्ति एक अधिक मानवीय विश्व का निर्माण करने हेतु ईश्वर और अपने भाई बहनों के संग मिलकर काम करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो चौदवें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में लगभग 300 लोगों से मुलाकात की, जो कल रोम के अगुस्टिनियानुम पैट्रिस्टिक इंस्टीट्यूट में हुई 21वीं सदी शहीदों का नया दौर नामक सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में अलग अलग भौगोलिक इलाकों और आज के समय में ख्रिस्तीय गवाही के कई रूपों पर आधारित अनुभवों और योगदानों के जरिए मौजूदा दौर पर शहादत की घटना पर सोचने और अध्ययन करने का मौका मिला। इसे संत प्रकरण के लिए बने विभाग और नए शहीदों आस्था के गवाहों के लिए बने विभाग के आयोग ने आयोजित किया था। संत पापा ने एकत्रित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि संत पापा फ्रांसिस द्वारा 2023 में बनाए गए इस आयोग का काम उन लोगों के बारे में गवाहियां इकट्ठा करना है जिन्होंने मसीह के लिए अपनी जान दी है। संत पापा ने कहा कि उनकी गवाही हमें बताती है कि हमारा समय, जो ताकत की संस्कृति, बेहिसाब जोर जबरदस्ती और हथियारों के सिस्टम के लगातार विकास से हावी है, ऐसे लोगों की बहादुरी का भी गवाह है जिन्हें हम खुशी खुशी आस्था के नए गवाह कहते हैं। संत पापा ने याद दिलाया कि उनमें से कई लोग ताकत के गलत इस्तेमाल या आपराधिक संगठनों के हाथों मारे जाते हैं, क्योंकि ख्रिस्तीय होने के नाते वे सुसमाचार के नाम पर उनके अन्याय का विरोध करते हैं। संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि आस्था के इन गवाहों में यह साफ दिखता है कि अच्छाई करते रहने और प्यार में खुद को पूरी तरह समर्पित करने की उनकी हिम्मत बुराई पर यीशु की जीत से मिली है। यही वह एकमात्र निश्चित बात है जो उन लोगों को गहरा सुकून दे सकती है जो उनमें विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, उनमें ख्रिस्तीय जीवन शैली वीरतापूर्वक दिखाई देती है। यह कभी टकराव नहीं चाहती, बल्कि विनम्रता की शक्ति से टकराव को खत्म कर देती है। संत पापा ने कहा कि हम सभी प्रतिबद्धता के इस क्षितिज और उम्मीद की इस कार्यशाला में अपना योगदान देने के लिए बुलाए गए हैं। अंत में संत पापा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को उनकी बहुमूल्य सेवा के लिए धन्यवाद दिया और अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया। उधर द्वितीय महासभा घोषणा नोस्त्रा एताते की 60वीं सालगिरह पर विश्वास के सिद्धांत, ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने और अंतरधार्मिक वार्ता के लिए बने तीन विभागों ने कट्टरपंथ और अतिवाद का मुकाबला करने, बचाव दुश्मनी या तर्क के जीत को छोड़ने और धार्मिक आजादी की रक्षा करने की अपील को दोहराते हुए आशा की यात्रा लेख प्रकाशित किया। उस समय इसने कैथोलिक और यहूदियों, साथ ही दूसरे धर्मों के मानने वालों के बीच रिश्तों में एक अहम बदलाव की शुरुआत की और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में आशा की एक किरण का काम किया। आज 60 साल बाद भी महासभा का घोषणा पत्र युद्ध से बर्बाद हुई हमारी दुनिया और खराब होते प्राकृतिक पर्यावरण में उस आशा को फिर से जगाने के लिए एक अहम पैमाना बना हुआ है। इसी कारण महासभा की घोषणा की 60वीं वर्षगांठ पर विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग, ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग और अंतरधार्मिक संवाद के लिए गठित विभाग आशा की यात्रा नामक दस्तावेज प्रकाशित कर रहे हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो नोस्त्रा एताते के बाद से संवाद के प्रमुख चरणों को पुनः रेखांकित करता है और एक शाश्वत संदेश की पुष्टि करता है। आशा की यात्रा लेख इस बात को फिर से दोहराती है कि यहूदी लोगों के साथ ईश्वर का समझौता कभी नहीं बदला जा सकता और यह बात कलीसिया के लिए लगातार एक चुनौती बनी हुई है। यहूदी लोगों के साथ एकजुटता में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ साझा संघर्ष भी शामिल है। इस संदर्भ में यह देखा गया है कि मध्य पूर्व के संघर्षों ने यहूदी ख्रिस्तीय वार्ता पर भी अपना असर डाला है। संबंधित विभागों का कहना है कि बातचीत की कई पुल डगमगाए हैं और हुई घटनाओं की अलग अलग व्याख्याओं के कारण
उनकी लगातार परीक्षा हो रही है। साथ ही वे इस आपसी समझ और सम्मान को बनाए रखने और उसे और विकसित करने का आग्रह करते हैं, जो 60 वर्षों से संयुक्त प्रयासों के दौरान मजबूती से कायम रहा है। इस लेख में बताया गया है कि इस काम के ठोस नतीजे सामने आए हैं, जिनमें इस्लाम और दूसरे धर्मों के साथ हुई बातचीत भी शामिल है। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 70वें आम सम्मेलन में अपनी टिप्पणी में राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर ने परमाणु प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग का आह्वान किया, जो इसके साथ जुड़ी प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों से अलग नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 70वां आम सम्मेलन ऑस्ट्रिया के वियना में 15 सितंबर को शुरू हुआ और शुक्रवार 18 सितंबर तक जारी रहेगा। सम्मेलन के लिए संत पापा लियो 14वें की शुभकामनाएं देते हुए महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने परम धर्म पीठ की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को याद दिलाया। 70 साल पहले इसकी शुरुआती हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक होने के नाते उनका यह मानना रहा है कि परमाणु ऊर्जा जैसी बड़ी क्षमता वाली तकनीक को सही नैतिक सिद्धांतों के आधार पर चलाया जाना चाहिए, शांति और इंसानों के सर्वांगीण विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किसी भी विनाशकारी इस्तेमाल से बचाया जाना चाहिए। उधर उत्तरी अरब के प्रेरितिक विकार धर्माध्यक्ष एल्डो बेर्राडी और कुवैत व बगदाद के ग्रीक कैथोलिक मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष घट्टाज हाजिम ने मिलकर एथोस पर्वत की तीर्थ यात्रा का नेतृत्व किया। यह यात्रा 6 से 9 सितंबर तक हुई। इसमें शामिल लोगों को प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोम का आशीर्वाद भी मिला और वे वहां मौजूद 20 मठों में से 12 मठों के दर्शन कर पाए। धर्माध्यक्ष बेर्राडी ने इसे एक ऐतिहासिक यात्रा बतलाया। इसे ऐतिहासिक इसलिए कहा गया क्योंकि यह कुवैत में कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के बीच अच्छे संबंधों को दर्शाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारी आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini.
1: भाइयो एवं बहनो, सुप्रभात और सुस्वागतम। मानव समुदाय पर समर्पित धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस का दूसरा अध्याय हमें मानव का एक दूसरे के संग बढ़ती निर्भरता पर चिंतन करने का आह्वान करता है। यह वर्तमान दुनिया की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इस सच्चाई को यद्यपि चाहिए कि वह अपनी गहराई में लोगों के बीच एकता में पूर्णता को प्राप्त करे, जिसके लिए व्यक्ति की पूर्ण आध्यात्मिक गरिमा के प्रति आपसी सम्मान जरूरी है। ये वे बातें हैं जो हमारे समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक ओर तकनीकी विकास, संचार और सोशल मीडिया तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में निरंतर वृद्धि नई संभावनाओं को खोल रही है। जहां हम दीवारों को टूटता और दूरियों को कम होता पाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम संबंधों को व्यक्तिगत तौर में कम और आभासी रूप में अधिक होता पाते हैं। यहाँ हम अपने लिए एक जोखिम को पाते हैं जो हमारे निर्णयों को अल्गोरिदम के हवाले कर देता है, जो कि सिर्फ मानवीय चेतना का भाग है। इस संदर्भ में ख्रिस्तीय समुदाय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सामाजिक रिश्तों में वास्तविक सार और व्यक्तिगत गहराई हासिल हो। धर्म सभा हमें ईश्वर की सृजनात्मक योजना से शक्ति और जीवन जीने के तरीकों को अपनाने हेतु आह्वान करता है, जहां सभी मानव एक परिवार का निर्माण करने और एक दूसरे के संग भ्रातृत्व के भाव में व्यवहार करने को बुलाए जाते हैं। यही कारण है कि हम ईश्वर और पड़ोसी के प्रेम को पहली और सबसे बड़ी आज्ञा स्वरूप पाते हैं, जो कि यीशु ख्रिस्त में पूर्ण रूपेण प्रकट होती और अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। संत पापा लियो ने कहा कि मानव की परिपूर्णता और समाज का विकास अपने में एक दूसरे के संग पारस्परिक निर्भरता से संलग्न हो। उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध रखना या उन्हें अलग करना अपने में अर्थहीन होगा। इतिहास, यहाँ तक कि वर्तमान इतिहास भी इस सत्य की पुष्टि स्पष्ट रूप में करता है। इसलिए हमें बार बार यह दोहराने से कभी नहीं थकना चाहिए, जैसे कि द्वितीय वैटिकन महासभा के आचार्यों ने अपने शब्दों में किया, कि सभी सामाजिक संस्थाओं की विषय वस्तु और लक्ष्य मनुष्य ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपनी प्रकृति के कारण पूरी तरह से सामाजिक जीवन पर निर्भर है। इस दृष्टिकोण से गाउडियम एट स्पेस इस बात पर जोर देता है कि दुनिया के लोगों और देशों की विविधता अपने में एक खतरा या एक जोखिम स्वरूप ना समझा जाए, बल्कि यह एक समृद्धि और विकास का एक साधन हो। युद्ध, जो कभी कभी हिंसा में परिणत होता है, पाप की शक्ति का परिणाम है और जिस भांति यह मन स्थितियों और कार्यों को विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न करता है, हमारे लिए विनाश और मृत्यु का कारण बनता है। हमें सदैव आदान प्रदान, साझा करने और सेवा करने के तर्क हेतु खुला रहना चाहिए, जैसे कि हम मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में पाते हैं। इस आधार पर प्रेरितिक धर्म सिद्धांत जन सामान्य की भलाई के बारे में एक ठोस परिभाषा प्रस्तुत करता है कि यह सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों का योग है जो सामाजिक समूहों और उनके व्यक्तिगत सदस्यों को संतुष्टि या विकास के लिए अपेक्षाकृत संपूर्ण और आसान मदद प्रदान करती है। इसके साथ ही लोगों के बीच परस्पर आत्मनिर्भरता को स्वीकारना, हर सामाजिक समूह को चाहिए कि वह दूसरे समूहों की जरूरतों और नैतिक उम्मीदों और यहाँ तक कि पूरे मानव परिवार की भलाई का ध्यान रखे। संत पापा लियो ने कहा,
2: I padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche di maggiore urgenza.
1: इस आधार से शुरू करते हुए धर्म सभा के आचार्यों ने इस भांति कुछ व्यवहारिक और विशेष परिस्थितियों को सुझाया। सर्वप्रथम व्यक्ति का मानवीय सम्मान, गौडियम एट स्पेस इसके संबंध में कहता है, जो कोई जीवन के विरुद्ध है, जैसे कि किसी तरह की हत्या, नरसंहार, गर्भपात, इच्छा मृत्यु या स्वयं के विनाश की चाह, जो कुछ भी मानवीय सम्मान की समग्रता का हनन करता है, जैसे कि अंग भंग करना, शरीर या मन को यातना देना या इच्छा शक्ति को ही जबरदस्ती दबाने की कोशिश करना, जो कुछ भी मानवीय सम्मान का अपमान करता है, जैसे कि अमानवीय स्थिति में जीवन यापन करना, मनमाना कारावास, देश निष्कासन, गुलामी, वेश्यावृत्ति, महिलाओं और बच्चों की बिक्री, इसके साथ ही घृणित कार्य के स्थल जहां व्यक्तियों को लाभ हेतु चीजों वस्तुओं की भांति उपयोग किया जाता है, न कि स्वतंत्र और उत्तरदायी जनों के रूप में। ये सभी बातें और इनके जैसी अन्य बातें वास्तव में घोर निंदनीय हैं। दूसरी परिस्थिति सभी मनुष्यों की मूलभूत समानता, सामाजिक न्याय की मांग करती है। इसके संदर्भ में दस्तावेज कहता है, हर प्रकार का भेदभाव, चाहे वह सामाजिक या सांस्कृतिक, लिंग, जाति, रंग, सामाजिक परिस्थिति, भाषा या धर्म के आधार पर हो, हमें उन्हें दूर और उखाड़ फेंकने की जरूरत है, क्योंकि वे ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध हैं। अंततः धर्म सभा के आचार्य हमें यह कहते हैं कि हम व्यक्तिवाद की मानसिकता से परे जाएं और उत्तरदायित्व और सहभागिता के मनोभावों को अपने में वहन करें।
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि मानवता का यह दृष्टिकोण जो लोगों का समुदाय है, हमारे लिए द्वितीय वैटिकन सभा की ओर से एक मूल्यवान निधि स्वरूप दी गई है। यह हम सबों को व्यक्तिगत और सामुदायिक आत्म परीक्षण करने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप हम वर्तमान समय के सामाजिक और राजनैतिक परियोजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो व्यक्ति के मानवीय सम्मान, सामाजिक न्याय और जन सामान्य के हित में स्वतंत्र सहभागिता पर आधारित है, क्योंकि मानवता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हर व्यक्ति एक अधिक मानवीय विश्व का निर्माण करने हेतु ईश्वर और अपने भाई बहनों के संग मिलकर काम करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में लगभग 300 लोगों से मुलाकात की, जो कल रोम के अगुस्टिनियानुम पैट्रिस्टिक इंस्टीट्यूट में हुई 21वीं सदी शहीदों का नया दौर नामक सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में अलग अलग भौगोलिक इलाकों और आज के समय में क्रिस्तीय गवाही के कई रूपों पर आधारित अनुभवों और योगदानों के जरिए मौजूदा दौर पर शहादत की घटना पर सोचने और अध्ययन करने का मौका मिला। इसे संत प्रकरण के लिए बने विभाग और नए शहीदों आस्था के गवाहों के लिए बने विभाग के आयोग ने आयोजित किया था। संत पापा ने एकत्रित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि संत पापा फ्रांसिस द्वारा 2023 में बनाए गए इस आयोग का काम उन लोगों के बारे में गवाहियां इकट्ठा करना है जिन्होंने मसीह के लिए अपनी जान दी है। संत पापा ने कहा कि उनकी गवाही हमें बताती है कि हमारा समय, जो ताकत की संस्कृति, बेहिसाब जोर जबरदस्ती और हथियारों के सिस्टम के लगातार विकास से हावी है, ऐसे लोगों की बहादुरी का भी गवाह है जिन्हें हम खुशी खुशी आस्था के नए गवाह कहते हैं। संत पापा ने याद दिलाया कि उनमें से कई लोग ताकत के गलत इस्तेमाल या आपराधिक संगठनों के हाथों मारे जाते हैं, क्योंकि ख्रिस्तीय होने के नाते वे सुसमाचार के नाम पर उनके अन्याय का विरोध करते हैं। संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि आस्था के इन गवाहों में यह साफ दिखता है कि अच्छाई करते रहने और प्यार में खुद को पूरी तरह समर्पित करने की उनकी हिम्मत बुराई पर यीशु की जीत से मिली है। यही वह एकमात्र निश्चित बात है जो उन लोगों को गहरा सुकून दे सकती है जो उनमें विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, उनमें ख्रिस्तीय जीवन शैली वीरतापूर्वक दिखाई देती है। यह कभी टकराव नहीं चाहती, बल्कि विनम्रता की शक्ति से टकराव को खत्म कर देती है। संत पापा ने कहा कि हम सभी प्रतिबद्धता के इस क्षितिज और उम्मीद की इस कार्यशाला में अपना योगदान देने के लिए बुलाए गए हैं। अंत में संत पापा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को उनकी बहुमूल्य सेवा के लिए धन्यवाद दिया और अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया। उधर द्वितीय महासभा घोषणा नोस्ट्रा एताते की 60वीं सालगिरह पर विश्वास के सिद्धांत, क्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने और अंतरधार्मिक वार्ता के लिए बने तीन विभागों ने कट्टरपंथ और अतिवाद का मुकाबला करने, बचाव दुश्मनी या तर्क के जीत को छोड़ने और धार्मिक आजादी की रक्षा करने की अपील को दोहराते हुए आशा की यात्रा लेख प्रकाशित किया। उस समय इसने कैथोलिक और यहूदियों, साथ ही दूसरे धर्मों के मानने वालों के बीच रिश्तों में एक अहम बदलाव की शुरुआत की और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में आशा की एक किरण का काम किया। आज 60 साल बाद भी महासभा का घोषणा पत्र युद्ध से बर्बाद हुई हमारी दुनिया और खराब होते प्राकृतिक पर्यावरण में उस आशा को फिर से जगाने के लिए एक अहम पैमाना बना हुआ है। इसी कारण महासभा की घोषणा की 60वीं वर्षगांठ पर विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग, क्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग और अंतरधार्मिक संवाद के लिए गठित विभाग आशा की यात्रा नामक दस्तावेज प्रकाशित कर रहे हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो नोस्ट्रा एताते के बाद से संवाद के प्रमुख चरणों को पुनः रेखांकित करता है और एक शाश्वत संदेश की पुष्टि करता है। आशा की यात्रा लेख इस बात को फिर से दोहराती है कि यहूदी लोगों के साथ ईश्वर का समझौता कभी नहीं बदला जा सकता और यह बात कलीसिया के लिए लगातार एक चुनौती बनी हुई है। यहूदी लोगों के साथ एकजुटता में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ साझा संघर्ष भी शामिल है। इस संदर्भ में यह देखा गया है कि मध्य पूर्व के संघर्षों ने यहूदी ख्रिस्तीय वार्ता पर भी अपना असर डाला है। संबंधित विभागों का कहना है कि बातचीत की कई पुल डगमगाए हैं और हुई घटनाओं की अलग अलग व्याख्याओं के कारण
उनकी लगातार परीक्षा हो रही है। साथ ही वे इस आपसी समझ और सम्मान को बनाए रखने और उसे और विकसित करने का आग्रह करते हैं, जो 60 वर्षों से संयुक्त प्रयासों के दौरान मजबूती से कायम रहा है। इस लेख में बताया गया है कि इस काम के ठोस नतीजे सामने आए हैं, जिनमें इस्लाम और दूसरे धर्मों के साथ हुई बातचीत भी शामिल है। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 70वें आम सम्मेलन में अपनी टिप्पणी में राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर ने परमाणु प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग का आह्वान किया, जो इसके साथ जुड़ी प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों से अलग नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 70वां आम सम्मेलन ऑस्ट्रिया के वियना में 15 सितंबर को शुरू हुआ और शुक्रवार 18 सितंबर तक जारी रहेगा। सम्मेलन के लिए संत पापा लियो 14वें की शुभकामनाएं देते हुए महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने परम धर्म पीठ की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को याद दिलाया। 70 साल पहले इसकी शुरुआती हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक होने के नाते उनका यह मानना रहा है कि परमाणु ऊर्जा जैसी बड़ी क्षमता वाली तकनीक को सही नैतिक सिद्धांतों के आधार पर चलाया जाना चाहिए, शांति और इंसानों के सर्वांगीण विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किसी भी विनाशकारी इस्तेमाल से बचाया जाना चाहिए। उधर उत्तरी अरब के प्रेरितिक विकार धर्माध्यक्ष एल्डो बेर्राडी और कुवैत व बगदाद के ग्रीक कैथोलिक मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष घट्टाज हाजिम ने मिलकर एथोस पर्वत की तीर्थ यात्रा का नेतृत्व किया। यह यात्रा 6 से 9 सितंबर तक हुई। इसमें शामिल लोगों को प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोम का आशीर्वाद भी मिला और वे वहां मौजूद 20 मठों में से 12 मठों के दर्शन कर पाए। धर्माध्यक्ष बेर्राडी ने इसे एक ऐतिहासिक यात्रा बतलाया। इसे ऐतिहासिक इसलिए कहा गया क्योंकि यह कुवैत में कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के बीच अच्छे संबंधों को दर्शाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है।

0: तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो, किसी न किसी दिन उसे फिर पा जाओगे। अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं। पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा पर ही ध्यान रखता वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता वह नहीं लुनता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के प्रथम 4 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इसमें उपदेशक ने कर्तव्य करने पर ध्यान आकर्षित कराया है। यदि व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए जीवन यापन करता है तो वह जीवन का आनंद उठा पाएगा। 11वें अध्याय के पहले पद में उपदेशक धैर्य और दूरदर्शिता के साथ काम करना ही समझदारी बताता है। भले ही तुरंत लाभ न मिले, धैर्य से प्रतीक्षा करने पर वह अवश्य मिल जाएगा। दूसरी ओर कई बाइबल आचार्यों ने इस पद का अर्थ उदारता से अपनी रोटी को साझा करना सुझाया है। उनके अनुसार अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो से अभिप्राय यही कि अपनी भौतिक चीजें जरूरतमंदों को इस तरह दो कि वह बेकार लगें, जैसे पानी पर रोटी फेंकी जाती हो और तुम उसके लिए पुरस्कृत किए जाओगे। तात्पर्य यही कि अभी कुछ करो ताकि फल भले ही तुरंत न दिखे, वह अवश्य मिलेगा। तदुपरांत उपदेशक कहता है, अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। उपदेशक यहाँ उदारता की सलाह देता है और ऐसा वह इस बात को ध्यान में रखते हुए करता है कि भविष्य भले ही अनिश्चित हो, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 7 या 8 लोगों में अपना धन बांटने का परामर्श स्पष्ट है और वह यह कि हर मौके का अंदाजा लगाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या मुसीबत आ सकती है और ऐसी अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से ही तैयारी कर लेना समझदारी है। फिर उपदेशक बरसते बादल और हवा के झोंकों से गिरते पेड़ों का जिक्र कर कारण और प्रभाव के विचार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, बादल जब पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं, और पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। अर्थात जिसकी नियति जैसी है वैसी ही होगी, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध जाने का कोई लाभ नहीं। यही सिद्धांत हमें अनंत की ओर ले जाता है, क्योंकि इस दुनियावी जिंदगी में इंसान की बुराई या अच्छाई का जवाब प्रायः इस जीवन में नहीं मिलता। उपदेशक कहता है कि हवा पर ध्यान देने वाला बोता नहीं और बादलों की ओर देखते रहने वाला लुनता नहीं। श्रोताओं, ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर बोने के लिए अर्थात कुछ करने के लिए प्रेषित किया है। हम हमारे समय का सदुपयोग करें और अपने कामों के उत्तम फल उत्पन्न करें, यही हमसे अपेक्षा की जाती है। यदि हम किसी बहाने अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते तो सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अस्तु मनुष्य परिस्थितियों को दोष देना बंद करे तथा ईश्वर में अपना विश्वास सुदृढ़ रख कर अपने कर्तव्यों का पालन करता चला जाए।

और अब आइए 11वें अध्याय के 5वें और 6ठे पदों का पाठ करें। ये पद इस प्रकार हैं, जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ को बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते शब्दों से उपदेशक सुलेमान हमें फिर से मानवीय ज्ञान की सीमाओं का स्मरण दिलाता है। हम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते हैं और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है। इसी तरह पृथ्वी पर ईश्वर के जो कार्य हैं, उनके काम करने के कुछ पहलू हैं जिन्हें समझना या बुद्धिगम्य करना मानव की बुद्धि के परे है। श्रोताओ, माता के गर्भ में जीवन का प्रारंभ होता है, जो जन्म तक मनुष्य के लिए एक रहस्य ही बना रहता है और यही सत्य का आधार है। संत योहन रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय के 8वें पद में प्रभु येसु मसीह भी इसी तथ्य की पुनरावृत्ति करते हैं। कहते हैं, हवा जिधर चाहती उधर बहती है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आती है और किधर जाती है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। श्रोताओ, सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों की थाह लेना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। हवा के प्रवाह का उदाहरण देकर उपदेशक हमसे और युग युगांतर तक के सब मनुष्यों से ईश्वर के कार्यों के प्रति विनम्र बने रहने का अर्थ निवेदन करता है। आगे 11वें अध्याय के 6वें पद में वह कहता है, तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। श्रोताओ, इस पद में कृषि कार्य की छवि का उपयोग कर उपदेशक हमसे हर तरह के कामों के संपादन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। भले ही काम कोई भी हो, वह भले ही सुबह किया जाए या शाम के समय, किसी भी काम से पीछे नहीं हटा जाए। हर काम के लिए मनुष्य तत्पर रहे, मनुष्य किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि केवल काम करने के बाद ही वह फल की आशा कर सकता है। यदि वह काम ही नहीं करेगा तो फल की आशा कैसे कर पाएगा। यहां उपदेशक सुलेमान हम सबको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता है, ताकि हम विश्वासपूर्वक अपने समस्त कामों का संपादन करें, क्योंकि ऐसा कर ही हम जान पाएंगे कि सफलता मिलेगी या नहीं। यदि काम ही नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि वह काम सफल होगा या नहीं, उसका परिणाम अच्छा होगा या नहीं। श्रोताओ, इस प्रकार उपदेशक ग्रंथ का 11वां अध्याय हमें उदारता का आलिंगन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें स्वतंत्रता पूर्वक दान करने और अन्यों में अपनी संपत्ति साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि हमारी उदारता और हमारी भलाई का पुरस्कार हमें तुरंत नहीं दिखता, किंतु पुरस्कार अवश्य मिलेगा। विशेषकर इस अध्याय का 5वां पद स्मरण दिलाता है कि मानवीय समझ सीमित है और सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों को पूर्णतः बुद्धिगम्य करने में असमर्थ है। और 6वां पद सिखाता है कि प्रज्ञा और समझदारी के साथ अपने सभी कामों का उदारतापूर्वक हम संपादन करें तथा जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद मेहनत करते रहें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम और यूक्रेन के संघर्ष पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। वैटिकन राज्य सचिव ने 16 सितंबर को इताली संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में विश्वास एवं तर्क पर एक सम्मेलन में कहा, हम रुकें और सच में विचार करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इसके इस्तेमाल के क्या नतीजे हो सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI, इसकी क्षमता और इसके मानव एवं आम लोगों की भलाई को होने वाले खतरे सम्मेलन में कार्डिनल के भाषण के मुख्य बिंदु थे। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इससे खुद बड़े टेक कंपनियों द्वारा AI नियंत्रण की मांग के साथ आयोजित किया गया था। कार्डिनल परोलिन ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस तरह के विचार को नैतिक तर्क ही आगे बढ़ाएंगे। कार्डिनल ने इटली के राष्ट्रपति सेर्जो मत्तेरेल्ला की हाल ही में की गई अपील की तारीफ की, जिसमें उन्होंने नई तकनीकी को नियंत्रित करने में राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक घटना है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। कार्डिनल परोलिन ने कहा, मेरी चिंता इस बात के लिए है कि कुछ देश ऐसे हैं जो इसे अकेले करना चाहते हैं। इसके बजाय कुछ ऐसे आम नियम बनाने में सभी की भागीदारी जरूरी है जो सच में इस परिस्थिति को नियंत्रित कर सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग जवाब खोजने के लिए एक साथ आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह मानव का भविष्य सचमुच दांव पर है। जब उनसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके हिस्सा लेने और क्या वे इस मौके का इस्तेमाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की देखरेख के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बनाने की मांग के लिए करेंगे, इस बारे में पूछा गया तो कार्डिनल ने इस विचार को अधिक तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा, शायद हम इस चरण में तुरंत तकनीकी हल ढूंढने वाले नहीं हैं। वैटिकन आमतौर पर सिद्धांत तय करता और उसे सामने रखता है, फिर सहकारिता की समस्या का समाधान उन लोगों के द्वारा राज्यों और संबंधित निकायों के स्तर पर किया जाएगा। AI के व्यक्तिगत इस्तेमाल के बारे पूछे जाने पर कार्डिनल ने कहा, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता खुद को थोप रही है, क्योंकि जब आप अपना कंप्यूटर खोलते और कुछ पढ़ते हैं तो यह आपको पहले से ही एक सारांश देता है। उन्होंने बतलाया कि वे अपने उपदेश तैयार करने के लिए निश्चय ही AI का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूरी तरह से सिर है, हृदय नहीं। मैं अपने प्रवचनों में थोड़ा दिल लगाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वैटिकन राज्य सचिव ने यूक्रेन की स्थिति और एक ऐसे संघर्ष में वैटिकन की कूटनीति की भूमिका के बारे में सवालों के जवाब दिए, जो लगातार गंभीर होता जा रहा है और यूरोपीय संघ की सीमाओं के करीब बढ़ता जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि परिणाम सीमित है, लेकिन उन्होंने कहा, हम मानवीय कूटनीति के अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सन 1567 में संत स्तानिस्लास कोस्टका ने वियना छोड़ा और जर्मनी पार करके रोम पहुंच गए थे, इस उम्मीद से कि वे अपने पिता की इच्छा के विपरीत येसु संघ में प्रवेश कर पाएंगे। इस साल युवा पोलिश तीर्थयात्रियों ने बुलाहट के लिए प्रार्थना करने हेतु उसी 1713 किलोमीटर के रास्ते को फिर से तय किया। रोम में संत अंद्रिया अल्क्वेर नाले के गिरजाघर में संत स्तानिस्लास की कब्र पर उन्होंने कार्डिनल जॉन फ्रांको गिरलांदा की अध्यक्षता में एक ख्रिस्त्याग के साथ तीर्थयात्रा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। यह तीर्थयात्रा संत स्तानिस्लास के संत बनने की 300वीं सालगिरह के मौके पर हुई और इसे 160 लोगों के साथ एक रिले के तौर पर किया गया। पहला चरण वियना के लींज तक 3 जुलाई को शुरू हुआ था। धर्माध्यक्ष शिमोन स्टूलकोवास्की ने कहा, हम दुनिया और यूरोप को संत स्तानिस्लास की याद दिलाना चाहते थे, जिन्होंने इस तीर्थ यात्रा को शुरू किया था, जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली से होकर गुजरे थे। 15 सितंबर को रोम में संत अंद्रिया अल्क्वेर नाले गिरजाघर में संत स्तानिस्लास की कब्र पर तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपने प्रवचन में कार्डिनल जॉन फ्रांको ने युवा संत के जीवन के नाट्य दौर को याद किया। वियना में कॉलेजियम नोबेलियम में पढ़ाई के दौरान स्तानिस्लास को येसु संघ में अपनी रुचि का पता चला। अपने परिवार के विरोध की आशंका के चलते वे वियना से भाग गए। पहले जर्मनी गए, जहां उन्हें संत पीटर कनेसियस से मदद मिली, और फिर रोम चले गए, जहां उन्हें नौशिष्यालय में शामिल किया गया। कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद स्तानिस्लास ने कमाल का पक्का इरादा दिखाया।
कार्डिनल ने कहा कि यह ताकत कुछ हद तक उनके चरित्र और पक्के इरादे से और कुछ हद तक एक अलौकिक स्रोत से आई थी। वियना में रहते हुए स्टानिस्लास को एक गंभीर बीमारी हुई। उस दौरान उन्हें सपने में कुंवारी मरियम और बालक येसु दिखाई दिए। माता मरियम ने उन्हें बच्चे को उनकी बाहों में लेने दिया और उन्हें समझाया कि उनकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है और उन्हें येसु संग में शामिल होना है। 2 साल बाद जब वे रोम में एक जेसुइट नौशिष्य थे, अपनी मृत्यु के समय फिर एक बार माता मरियम से मुलाकात की। संत स्टानिस्लास की मृत्यु 18 साल की उम्र में हुई। वे नौशिष्यों एवं युवा येसु संघियों के संरक्षक संत हैं। कार्डिनल किरलांदा ने कहा कि संत स्टानिस्लास कोस्टका, जो एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से थे, दुनियावी चीजों की घमंड को पूरी तरह समझते थे कि वे धुंध की तरह गायब हो जाती हैं, जबकि जो हमेशा रहता है वह ईश्वर की इच्छा है। कार्डिनल ने कहा, जिस सांसारिक समाज में हम रहते हैं वह हम सभी के लिए लगातार प्रलोभन का कारण है। यह कई तरह से अपने घमंड से अपनी ओर खींचता है और शैतान हमें ऐसी चीज के रूप में पेश करके धोखा देता है कि वह हमें खुशी दे सकती है। संत स्टानिस्लास हमें सिखाते हैं कि हमें इसका विरोध करना चाहिए और ईश्वर के प्रति वफादार रहना चाहिए, भले ही इससे हमारे आसपास के लोगों में गलत फहमी पैदा हो। 6 से 8 नवंबर को पोप लियो 14वें की उरुग्वे की प्रेरित यात्रा से पहले देश के धर्माध्यक्ष रोम में अपनी अदलिमिना प्रेरित यात्रा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार और घोषणा कैसे कर सकते हैं? फ्लोरिडा के धर्माध्यक्ष अल्फोंसो बाउर ने उरुग्वे के धर्माध्यक्षों की एक मुख्य चिंता को इस तरह बताया जो वे अपने अदलिमिना प्रेरित यात्रा के दौरान रोम लाए हैं। लैटिन अमेरिकी देश में कलीसिया सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने, लोगों का साथ देने और उम्मीद जगाने के नए तरीके ढूंढ रही है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो, किसी न किसी दिन उसे फिर पा जाओगे। अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं। पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा पर ही ध्यान रखता वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता वह नहीं लुनता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के प्रथम 4 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इसमें उपदेशक ने कर्तव्य करने पर ध्यान आकर्षित कराया है। यदि व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए जीवन यापन करता है तो वह जीवन का आनंद उठा पाएगा। 11वें अध्याय के पहले पद में उपदेशक धैर्य और दूरदर्शिता के साथ काम करना ही समझदारी बताता है। भले ही तुरंत लाभ न मिले, धैर्य से प्रतीक्षा करने पर वह अवश्य मिल जाएगा। दूसरी ओर कई बाइबल आचार्यों ने इस पद का अर्थ उदारता से अपनी रोटी को साझा करना सुझाया है। उनके अनुसार अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो से अभिप्राय यही कि अपनी भौतिक चीजें जरूरतमंदों को इस तरह दो कि वह बेकार लगें, जैसे पानी पर रोटी फेंकी जाती हो और तुम उसके लिए पुरस्कृत किए जाओगे। तात्पर्य यही कि अभी कुछ करो ताकि फल भले ही तुरंत न दिखे, वह अवश्य मिलेगा। तदुपरांत उपदेशक कहता है, अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। उपदेशक यहाँ उदारता की सलाह देता है और ऐसा वह इस बात को ध्यान में रखते हुए करता है कि भविष्य भले ही अनिश्चित हो, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 7 या 8 लोगों में अपना धन बांटने का परामर्श स्पष्ट है और वह यह कि हर मौके का अंदाजा लगाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या मुसीबत आ सकती है और ऐसी अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से ही तैयारी कर लेना समझदारी है। फिर उपदेशक बरसते बादल और हवा के झोंकों से गिरते पेड़ों का जिक्र कर कारण और प्रभाव के विचार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, बादल जब पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं, और पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। अर्थात जिसकी नियति जैसी है वैसी ही होगी, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध जाने का कोई लाभ नहीं। यही सिद्धांत हमें अनंत की ओर ले जाता है, क्योंकि इस दुनियावी जिंदगी में इंसान की बुराई या अच्छाई का जवाब प्रायः इस जीवन में नहीं मिलता। उपदेशक कहता है कि हवा पर ध्यान देने वाला बोता नहीं और बादलों की ओर देखते रहने वाला लुनता नहीं। श्रोताओं, ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर बोने के लिए अर्थात कुछ करने के लिए प्रेषित किया है। हम हमारे समय का सदुपयोग करें और अपने कामों के उत्तम फल उत्पन्न करें, यही हमसे अपेक्षा की जाती है। यदि हम किसी बहाने अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते तो सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अस्तु मनुष्य परिस्थितियों को दोष देना बंद करे तथा ईश्वर में अपना विश्वास सुदृढ़ रख कर अपने कर्तव्यों का पालन करता चला जाए।

और अब आइए 11वें अध्याय के 5वें और 6ठे पदों का पाठ करें। ये पद इस प्रकार हैं, जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ को बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते शब्दों से उपदेशक सुलेमान हमें फिर से मानवीय ज्ञान की सीमाओं का स्मरण दिलाता है। हम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते हैं और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है। इसी तरह पृथ्वी पर ईश्वर के जो कार्य हैं, उनके काम करने के कुछ पहलू हैं जिन्हें समझना या बुद्धिगम्य करना मानव की बुद्धि के परे है। श्रोताओ, माता के गर्भ में जीवन का प्रारंभ होता है, जो जन्म तक मनुष्य के लिए एक रहस्य ही बना रहता है और यही सत्य का आधार है। संत योहन रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय के 8वें पद में प्रभु येसु मसीह भी इसी तथ्य की पुनरावृत्ति करते हैं। कहते हैं, हवा जिधर चाहती उधर बहती है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आती है और किधर जाती है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। श्रोताओ, सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों की थाह लेना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। हवा के प्रवाह का उदाहरण देकर उपदेशक हमसे और युग युगांतर तक के सब मनुष्यों से ईश्वर के कार्यों के प्रति विनम्र बने रहने का अर्थ निवेदन करता है। आगे 11वें अध्याय के 6वें पद में वह कहता है, तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। श्रोताओ, इस पद में कृषि कार्य की छवि का उपयोग कर उपदेशक हमसे हर तरह के कामों के संपादन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। भले ही काम कोई भी हो, वह भले ही सुबह किया जाए या शाम के समय, किसी भी काम से पीछे नहीं हटा जाए। हर काम के लिए मनुष्य तत्पर रहे, मनुष्य किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि केवल काम करने के बाद ही वह फल की आशा कर सकता है। यदि वह काम ही नहीं करेगा तो फल की आशा कैसे कर पाएगा। यहां उपदेशक सुलेमान हम सबको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता है, ताकि हम विश्वासपूर्वक अपने समस्त कामों का संपादन करें, क्योंकि ऐसा कर ही हम जान पाएंगे कि सफलता मिलेगी या नहीं। यदि काम ही नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि वह काम सफल होगा या नहीं, उसका परिणाम अच्छा होगा या नहीं। श्रोताओ, इस प्रकार उपदेशक ग्रंथ का 11वां अध्याय हमें उदारता का आलिंगन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें स्वतंत्रता पूर्वक दान करने और अन्यों में अपनी संपत्ति साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि हमारी उदारता और हमारी भलाई का पुरस्कार हमें तुरंत नहीं दिखता, किंतु पुरस्कार अवश्य मिलेगा। विशेषकर इस अध्याय का 5वां पद स्मरण दिलाता है कि मानवीय समझ सीमित है और सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों को पूर्णतः बुद्धिगम्य करने में असमर्थ है। और 6वां पद सिखाता है कि प्रज्ञा और समझदारी के साथ अपने सभी कामों का उदारतापूर्वक हम संपादन करें तथा जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद मेहनत करते रहें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम और यूक्रेन के संघर्ष पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। वैटिकन राज्य सचिव ने 16 सितंबर को इताली संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में विश्वास एवं तर्क पर एक सम्मेलन में कहा, हम रुकें और सच में विचार करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इसके इस्तेमाल के क्या नतीजे हो सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI, इसकी क्षमता और इसके मानव एवं आम लोगों की भलाई को होने वाले खतरे सम्मेलन में कार्डिनल के भाषण के मुख्य बिंदु थे। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इससे खुद बड़े टेक कंपनियों द्वारा AI नियंत्रण की मांग के साथ आयोजित किया गया था। कार्डिनल परोलिन ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस तरह के विचार को नैतिक तर्क ही आगे बढ़ाएंगे। कार्डिनल ने इटली के राष्ट्रपति सेर्जो मत्तेरेल्ला की हाल ही में की गई अपील की तारीफ की, जिसमें उन्होंने नई तकनीकी को नियंत्रित करने में राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक घटना है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। कार्डिनल परोलिन ने कहा, मेरी चिंता इस बात के लिए है कि कुछ देश ऐसे हैं जो इसे अकेले करना चाहते हैं। इसके बजाय कुछ ऐसे आम नियम बनाने में सभी की भागीदारी जरूरी है जो सच में इस परिस्थिति को नियंत्रित कर सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग जवाब खोजने के लिए एक साथ आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह मानव का भविष्य सचमुच दांव पर है। जब उनसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके हिस्सा लेने और क्या वे इस मौके का इस्तेमाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की देखरेख के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बनाने की मांग के लिए करेंगे, इस बारे में पूछा गया तो कार्डिनल ने इस विचार को अधिक तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा, शायद हम इस चरण में तुरंत तकनीकी हल ढूंढने वाले नहीं हैं। वैटिकन आमतौर पर सिद्धांत तय करता और उसे सामने रखता है, फिर सहकारिता की समस्या का समाधान उन लोगों के द्वारा राज्यों और संबंधित निकायों के स्तर पर किया जाएगा। AI के व्यक्तिगत इस्तेमाल के बारे पूछे जाने पर कार्डिनल ने कहा, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता खुद को थोप रही है, क्योंकि जब आप अपना कंप्यूटर खोलते और कुछ पढ़ते हैं तो यह आपको पहले से ही एक सारांश देता है। उन्होंने बतलाया कि वे अपने उपदेश तैयार करने के लिए निश्चय ही AI का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूरी तरह से सिर है, हृदय नहीं। मैं अपने प्रवचनों में थोड़ा दिल लगाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वैटिकन राज्य सचिव ने यूक्रेन की स्थिति और एक ऐसे संघर्ष में वैटिकन की कूटनीति की भूमिका के बारे में सवालों के जवाब दिए, जो लगातार गंभीर होता जा रहा है और यूरोपीय संघ की सीमाओं के करीब बढ़ता जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि परिणाम सीमित है, लेकिन उन्होंने कहा, हम मानवीय कूटनीति के अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सन 1567 में संत स्तानिस्लास कोस्टका ने वियना छोड़ा और जर्मनी पार करके रोम पहुंच गए थे, इस उम्मीद से कि वे अपने पिता की इच्छा के विपरीत येसु संघ में प्रवेश कर पाएंगे। इस साल युवा पोलिश तीर्थयात्रियों ने बुलाहट के लिए प्रार्थना करने हेतु उसी 1713 किलोमीटर के रास्ते को फिर से तय किया। रोम में संत अंद्रिया अल्क्वेर नाले के गिरजाघर में संत स्तानिस्लास की कब्र पर उन्होंने कार्डिनल जॉन फ्रांको गिरलांदा की अध्यक्षता में एक ख्रिस्त्याग के साथ तीर्थयात्रा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। यह तीर्थयात्रा संत स्तानिस्लास के संत बनने की 300वें सालगिरह के मौके पर हुई और इसे 160 लोगों के साथ एक रिले के तौर पर किया गया। पहला चरण वियना के लींज तक 3 जुलाई को शुरू हुआ था। धर्माध्यक्ष शिमोन स्टूलकोवास्की ने कहा, हम दुनिया और यूरोप को संत स्तानिस्लास की याद दिलाना चाहते थे जिन्होंने इस तीर्थ यात्रा को शुरू किया था, जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली से होकर गुजरे थे। 15 सितंबर को रोम में संत अंद्रिया अल्क्वेर नाले गिरजाघर में संत स्तानिस्लास की कब्र पर तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपने प्रवचन में कार्डिनल जॉन फ्रांको ने युवा संत के जीवन के नाट्य दौर को याद किया। वियना में कॉलेजियम नोबेलियम में पढ़ाई के दौरान स्तानिस्लास को येसु संघ में अपनी रुचि का पता चला। अपने परिवार के विरोध की आशंका के चलते वे वियना से भाग गए। पहले जर्मनी गए जहां उन्हें संत पीटर कनेसियस से मदद मिली और फिर रोम चले गए जहां उन्हें नौशिष्यालय में शामिल किया गया। कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद स्तानिस्लास ने कमाल का पक्का इरादा दिखाया।
कार्डिनल ने कहा कि यह ताकत कुछ हद तक उनके चरित्र और पक्के इरादे से और कुछ हद तक एक अलौकिक स्रोत से आई थी। वियना में रहते हुए स्टानिस्लास को एक गंभीर बीमारी हुई। उस दौरान उन्हें सपने में कुंवारी मरियम और बालक येसु दिखाई दिए। माता मरियम ने उन्हें बच्चे को उनकी बाहों में लेने दिया और उन्हें समझाया कि उनकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है और उन्हें येसु संग में शामिल होना है। 2 साल बाद जब वे रोम में एक जेसुइट नौशिष्य थे, अपनी मृत्यु के समय फिर एक बार माता मरियम से मुलाकात की। संत स्टानिस्लास की मृत्यु 18 साल की उम्र में हुई। वे नौशिष्यों एवं युवा येसु संघियों के संरक्षक संत हैं। कार्डिनल किरलांदा ने कहा कि संत स्टानिस्लास कोस्टका, जो एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से थे, दुनियावी चीजों की घमंड को पूरी तरह समझते थे कि वे धुंध की तरह गायब हो जाती हैं, जबकि जो हमेशा रहता है वह ईश्वर की इच्छा है। कार्डिनल ने कहा, जिस सांसारिक समाज में हम रहते हैं वह हम सभी के लिए लगातार प्रलोभन का कारण है। यह कई तरह से अपने घमंड से अपनी ओर खींचता है और शैतान हमें ऐसी चीज के रूप में पेश करके धोखा देता है कि वह हमें खुशी दे सकती है। संत स्टानिस्लास हमें सिखाते हैं कि हमें इसका विरोध करना चाहिए और ईश्वर के प्रति वफादार रहना चाहिए, भले ही इससे हमारे आसपास के लोगों में गलत फहमी पैदा हो। 6 से 8 नवंबर को पोप लियो 14वें की उरुग्वे की प्रेरित यात्रा से पहले देश के धर्माध्यक्ष रोम में अपनी अदलिमिना प्रेरित यात्रा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार और घोषणा कैसे कर सकते हैं? फ्लोरिडा के धर्माध्यक्ष अल्फोंसो बाउर ने उरुग्वे के धर्माध्यक्षों की एक मुख्य चिंता को इस तरह बताया जो वे अपने अदलिमिना प्रेरित यात्रा के दौरान रोम लाए हैं। लैटिन अमेरिकी देश में कलीसिया सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने, लोगों का साथ देने और उम्मीद जगाने के नए तरीके ढूंढ रही है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।